0: 天呢，要归上的前去，托人南边叫天，俺陪陪金贵马前排，泡沫龙头月看，俺泡沫老客狗头车，俺金贵你为我给泡沫汤加饭，泡沫铁上来没排，被没忘前排，将他引起工地，恭喜月排，秀娃排。同志，你若在。哼，俺是三个人，俺就那。
1: 替大家他们家三个就上不学了，吃香的，你别学了呀，就动起来不了。吃了你干嘛？都给那把了呀，动脚的看这玉米的，他都三不行的买卖啊！
2: 年轻人啦，心刚气的样，前面对嘴站的卡了女，这脑背部动脚气的样，刚他们亲了，都特美。你他们想你，着迷信，祖辈大大怕了邪热闹，动作半个全部起不来，得不帮呢，还去钱的打。
1: 听见，听见，听见，听见，被谁给骂的？老汉老子把那马天那个讲啊，人头被这样一个了嘛，他这个的，那那么个请个了嘛，做八个爷，老汉老子把那马天那个讲啊，那那么阿天把没事呢，上山山这边，滚吧你！不学追你了，又打讨论我呢，过不得，再打打给姐妹，娘不得，你怕不想你，快走跑嘛，做什么的？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: ना पाल मार दे दे दे
1: तू जे जे रोला तू जे
2: पाला
1: पोमो
2: अम्मा तो
1: जे जे के
2: नानी पे तो के मैंने फोगे से ते जे से
0: ओ या ता से मु नंग सा उम दा पायो जो बा जी नी मा दे दे शु
2: तो नानी तो
3: जे जे
1: तू जे जे तू जे जे